0: जे दूजे पासों मंगी है जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराई है मह दूजी नाही था
1: सुदनू जोड़ जाइए प्रभ।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाणे आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वडियाई है या गुरमुखां दी वडियाई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਂ ਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ, ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ, ਇਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇਕ ਛਿੰਨ ਇਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ।
मुह दूजी नाही ठौर जिसके हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा, वो अगे टुर जाता है। सारे बाजार च गया मुआफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघिया है, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है। जदों मैं दुआ कीती, जदों इल्तजा कीती, जदों खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा मुआफ कर बाबा मुआफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घरां दे अग्गों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदां कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तां इहो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे भरवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनूं यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहिंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू कहा सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों नहीं? ओ पक्का मंगता है, ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है, ते इत्थे अगे आ जा, तुसी तां कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगता, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगता, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगता उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या, डीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहिगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता, आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदों तक कई बारी तेनू शक्कां शकूकां दा शुभात दा इशक होना पैंदा है, शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

0: मत को परम भूले संसार निगुरे का है नाओ बुरा।
1: जदों गुरु अमरदास पातशाह जी नूं ए एहसास होया, एहसास दिलवाया उस पंडित ने जो कि इन्हां दे नाल तुर रहा सी, जा रहा सी। इन्हां दा नां उस वेले अमरू है, अमरू करके लोकी जानते हैं। यह हरिद्वार की यात्रा ते जांदे हन हर एक साल, ते साध संगत एक पंडित जो इन्हां दे नाल तुर रहे रस्ते दे विच बैठे, ते पंडित ने कहा भाव कि जदों ये प्रसाद देन लगे अमरू जी, ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता, कहा नहीं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हले तक गुरु नहीं धारण किया, यह तेरी यात्रावां असफल हैं, बेकार हैं, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हद का प्रसाद नहीं लेना, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा, तेरे नाल रहा, ये मेरा टाइम भी व्यर्थ गया, क्योंकि मैं निगुरे पुरुष दे नाल रहे। ते साध संगत जदों मन दे विच ए गल आई, ते अमरू जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिन गुरु मुकत ना पाईए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां ये सब असफल होणगियां, बेकार होणगियां, क्योंकि गुरु कोई नहीं। ते गुरबाणी सानू बार बार समझाउंदी है साडा तां गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस दे लड कलगीधर पातशाह ने सानू लाया। ते गुरु होंदियां ते फिर असी संग ना करिए, गुरु होंदियां हजूरी विच ना बैठिए, ए तां होर भी त्रिग ए अजीब आ, ए तां फिर उस तो भी ज्यादा, क्योंकि जिन्हां दा गुरु है ही नहीं उन्हां दी गल कोई नहीं, जिन्हां दा गुरु है ते फिर गुरु दी हजूरी विच पहुंचन तां ही है ना। जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया, इथे ही मत्था टेक दिंदे, कई बंदे कह दिंदे इथों ही मत्था टेक दिंदे जी, यह गल नहीं। असीं पड़भागे हां गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहार, गुरपुरा पेटियो वडभागी मने पया प्रगासा। आओ निगरी पुरुष दा यह हाल है, ते आओ वडभागियो असीं सारे गुरु वाले हां, काश ए गुरु कृपा करदा रवे साडे ते, विसरना ही दातार अपना नाम देव, नाम दी बख्शिश करदा रवे, सदा सानू अपने संग लाए रखे, लड़ राए रखे।

सच में तुसी सारे पागल है जो अपने आप नूं नाम नाल जोड़े केड़े प्यार नाल रसना ने वाहिगुरु वाहिगुरु ते सदा जपे रसना इस वास्ते मुड़ मुड़ वाहिगुरु वाहिगुरु कर या तो वाहिगुरु नाल प्यार पै जाए वो बड़ा मुश्किल है साडा दुनियादारी नाल प्यार कम्मा नाल प्यार है दुकाना नाल प्यार है दोस्तां मित्रां नाल प्यार है वाहिगुरु नाल तो प्यार पैंदा ही या तो प्यार पै जाए या प्यार प्राप्त करने वास्ते वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप शुरू कर दे या तो प्यार हो जाए या उदे प्यार दी प्राप्ति वास्ते केड़ा साधन है उदी याद हर समय याद कर दे आम कहावत है ना जिन्हू याद करिए वो भी याद करे इस वास्ते वाहिगुरु वाहिगुरु का याद हर समय करे बच्चियां तू ही कराया करो निके निके बच्चे मातावां दा फर्ज है अमृत वेले उठा के बच्चे उठते हैं उन्होंने आके सोने जुड़े करके सोने केसां दी संभाल करके बच्चे ओ वाहिगुरु वाहिगुरु जो ये प्यार वधदा जो जो प्यार वधदा जाएगा त्यों त्यों प्यारा नेड़े नेड़े आंदा जाएगा अज तक लो प्यारा किस तरह बख्शिश पिया करता है ते इधर भाई जोगा सिंह दे अंदर जिहड़ी हौमे दा बीज सी हुण दरख्त बन गया नाना चलिया मेरे तो बगैर गुरु दा काम चल मना छेती पहुंच तुरदा तुरदा भाई जोगा सिंह हुशियारपुर पहुंच शाम दा टाइम हो गया दीवा बत्ती जल गए भाई जोगा सिंह ने सोचे सुने हुशियारपुर बड़ा सुंदर शहर है चलो मना सैर ही करिए।

0: योग आसन पहुंचे, हजूर ने दूर ही तक देखे। प्यारी साध संग पीवी, जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई योगा सिंह आ गया। आज आ जोगिया साढ़े कोल, आज भाई योगा सिंह सुन के बड़ा हैरान। मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे। भाई योगा सिंह साहबां दे कोल पहुंच, जोगा सिंह भाई आखा जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, घर नार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा। जोगा सिंह सोच मन, मैं ता समझिया सी गुरु अंतर जामी, कि अंतर जामी होंदा ता हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा, जे हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा होंदा ता मेनू सजा दे, पर गुरु तो मेनू प्यार प्या कर। जे गुरु अंतर जामी नहीं, जे गुरु इथो दिया नहीं जानदा तो मेरी दरगाह किवे बां फड़ेगा। 12 साल एवं गुरु की सेवा की, आखो सेवा अंतर जामी सतगुरु। सोचण लग सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है, हुण अशरदक दे खाते पिया पैंदा, गुरु नू पता है शरदा तू हीण पिया होंद। हजूर ने कहा जोगे आ मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तकिया, इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजरां नीवियां हो। हजूर ने फिर किया जोगे आ मेरे वल क्यों नहीं देंदा, तकदा फिर खा। तीजी वेरी जिसेले साहबा ने किया जोगे आ मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने जिसेले कलगीधर पातशाह वल तकिया, भाई जोगा सिंह हैरान हो गया, कंबन लग गया। की तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहन वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है। दोवे हथ रो पिया भाई जोगा सिंह, पातशाह मैं पापी हां, मैनू बख्श, पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो, आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया, जे संगत च बोलना था। हजूर कहन लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा, पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बड़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं। मैं तो सब कोई जा, हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप, ते तू कहना गुरु नू पता है नहीं। तो भाई जोगा सिंह कहन लगा महाराज ए भी चंगा होया, आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कहन लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है, मेरी अजमाइश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया, ते माद गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा सुनाया, पर मैं इम्तिहान च पूरा उतरे, अजमायश पूरा पहले जामे विच सिख ने अजमाया, बाबर दी जेल च अरदास की थी, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी। पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै। तो जो गया मैं संगतां दा हुक्म सिर मत्थे रखे, जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू दे घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा, पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मर के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बलदी रेत पाई। पर मैं अजमाइश ही पूरा बिधी चंद ने मेनू अजमाया, छेवे जाने दुशाले लैके भजा जाता पिछे बादशाह दी फौज आ, बिधी चंद ने छेवे पातशाह दा ध्यान करके पठियारी दे बलदे पट वी छाल मार। हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ, छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघा ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो। अधूर कहन लगे जो गया फिर बिधी चंद नू तत्ती वारी लगन दिती, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
1: ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ।

जे मेरे सिर दी भी तेन लोड़ पै जाती तामी मैं देने वास्ते तैयार स। पर जोगिया जिस तरह तू मेनू अजमाया है अगे किसे सिखनी नहीं।

0: बादशाह मेनू बख्श। मैं भूल गया, हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हौमे अखां थानी पानी बन के बाहर नहीं निकल। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कह लग गया कि गुरु नू पता ही कोई भूल गया। रो रो के भाई जोगा सिंह का मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया। आखो बस गल तो इतनी भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी ध्यान न पढ़ो।

कितना अनमोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया। सानू इस अनमोल खजाने की पहचान हो जाए। वाहेगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संगत जी, जपजी साहब की इतनी महानता, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार नाल आखो।

तू अपने गुरसिखा नजर आना, तेरा प्रताप तेरे गुरमुखा गुरसिखा नजर आना, तेरी सेवा करने वाले तू नजर आना। जेड़े जप तप करते हुए जीवन किसी जुगत संजम च रखते ने, इथे साहब कहते लोगों की ऐसी गल है, साध संगत कै आसरे प्रभ की प्रभ स्यों रंग लाए, जीवन च औगण नहीं रेंदे औगण कट, मुख उजला हर नाम तराए, जन्म मरण पाओ कटेन फिर जोन ना पाए, अंध कूप ते काटेन लड़ आ फड़ाए, नानक बख्श मिलायन रखे गल लाए। पर उन्हां दी गल है जिन्हां नूं धन गुरु नानक साहिब जी पातशाह ने जुगत बख्शी ते उन्हां

दो प्रेमी आए। इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकया। सामने पई संदोखड़ी विच कुछ माया पाई। थोड़ी दूर हट के बैठ गए ने। थोड़ी देर बाद दो चार होर प्रेमी आए ने। उन्हां भी संदूखड़ी विच पैसे पाए, मत्था टेकिया। वो भी बैठ गए ने। ज्यों ज्यों पौ फुटाला हुंदा गया, तीन चार सौ दे करीब लोकां दी भीड़ इस जोगी राज दे सामने लग गई। सारे लोग हाथ जोड़ के बैठे हन। कदों ए जोगी राज अखां खोले, सानू कोई गल सुनावे। इन्ने नू इना बैठिया लोकां नू इंज लगया जिवें हवा दे विच कोई सुगंधी खुशबू जी फैल गई। दो मुसाफिर तुरदे तुरदे आए ने, जिन्हां दे चेहरे ते बड़ी मिठास है, एक खिच है। वो तुरदे तुरदे इन्हां सारिया लोकां दे सामने आके बैठ गए। दोनां मुसाफरां ने उस जोगी राज वल देखिया। एक मुसाफिर मालक जापदा है, एक नौकर। नौकर कहन लगा, ए जोगी राज किवें मन टिका के बैठा है, किवें इहदा मन परमेश्वर दे नाल जुड़े है। उस मालक दा नौकर मुस्करा पिया। मुस्करा के अपने नौकर नू, हां जोगी राज जुड़िया होया है, पर परमेश्वर दे नाल नहीं, अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा, लोहे दी संदूखड़ी

गुरु साहबानी उस वक्त ए शब्द उचारिया, काल नाही, जोग नाही, नाही सत का डब, थान सट जग प्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया प्रिष्ट होंदी जा रही है, ए सारा संसार डूबता जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ऐ भाई पखंड छड दियो, कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखां बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहिबां ने

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई होई है। पिछा देखिया इस जोगी ने, ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहिबां ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नू कहना है।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां का अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं, कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे, भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी।

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई,

जिन्हों ने गज साढ़े तै तै धोतिया साढ़े तीन दिन गज दिया चिट्टिया धोतिया बनिया ने तेहरे पाए न तग ते तेरे तेरे जनेऊ काले च पाए हुए ने।

गली जिना जप मालिया जिना ने गला विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिटे चमकदे हुए लोटे फड़े हुए ने।

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बाल देने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के।

वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए तनी आदमी बैठ गया, गल्लां बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया ओ सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपन जे तो आड़ा मन नहीं जुड़ता ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए ने, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मेरे गलों ये झगड़ा ला ले है भाई, मैं पखंड नहीं करदा, उस परमेश्वर दा नाम जपे है ओदे नाल मिल गया है भाई, तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा तो

जिन्हों पाई जिन्हें ए दुनिया पैदा कीती है, ओ ते एक जगह बैठा होया अपनी खेड प्या देखता है। पर एक गल है, ओदा न्याओ सच्चा है, आप भी ओ सच्चा है, ते ओदा न्याओ भी सच्चा है।

जेड़ा अगे आया उन्हों खत्म कर दिता। बच्चियां तो लैके बुजुर्गां तक किसे नु भी कतल करन तो छड़िया नहीं। जदों मीह पैंदा है ते नालियां पानी दियां भर के चलदियां ने। इन्नी कतलेआम कीती के इमना बाद गलियां जिहड़ियां सन खून दियां भर भर के चलियां। हुण बाबर ने अपनी फतेह दा डंका वजाया। जिहड़े बचे उन्हां नूं कैदी बना के वापस तुर पिया। जदों ये हमला होया तां गुरु नानक साहब इमनाबाद दे बाहर

उस परमेश्वर दे ए जीव किन्ने दुखी ने, आपां भी चली नाल तुर पए। मीर खान ने अपना कोड़ा मर्दाने नूं फड़ाया, गुरु साहिबां नूं पार

अपने अपने लाड़ियां दे कोल बैठियां किन्नियां सोहणियां लगदियां सन, डोली ते चढ़ के आईयां ते किन्नियां खुशियां कीतियां।

इस माया दे करके सारी लड़ाई हुई, पर हैरानगी की गल ए कि ए माया पापा तो बगैर कठी नहीं होंदी ते मर गया दे नाल नाल भी नहीं जांदी। जदू आदमी मर जावे ते माया

हिंदवाणी तुरकाणी पटियारण ते ठकुराणी किसे दा सिर पाट गया किसे दियां बाहां वड्डियां गईयां कोई थां ही मर गया ते उन्हां नूं मसाणे विच जाके साड़ दिता गया भाव कि सिपाहियां ने किसे दा विलिया

पर ए अकाल पुरख सब कुछ ते तू आप करना है, मैं किनू आके सुनावा ए दुख ते सुख तेरे भाणे विच है। किथे जाके रोईए क्यों के सब कुछ तेरे हुक्म विच है, तू जो चाहवे ओही हुंदा है, किदे कोल जाके अपना दुख

या शहर छड के चले गए सन वापस आए। जिन्ना दे मिले ओ ता खुश होए, जिन्ना दा कोई ना रहा उन्ना रोना पिटना शुरू कर दिता। उन्ना लोकां नूं रोंदिया देख के तन गुरु नानक साहब ने आसा काफी महला पहला विच की समझाया गुरु साहब।

गोयली चराण वाला कि जिस तरह कोई लड़का गावां मज्जां चराण वास्ते लै जांदा है, सारा दिन चरांदा है ते शाम नूं उन्हां गावां नूं लै के वापस आ जांदा है। इस तरह ऐ इंसान तू भी इस संसार विच आया है, तेरे जीवन का दिन जदों मुक जाएगा

वो क्यों मर गए? ओनू नहीं सी मरना चाहिए, जेड़ा मर गया है ना ओनू तुसी रोंदे हो। साहब जी कहंदे ने ओने तो मरना ही सी, जिनू तुसी रोंदे हो अपना फिक्र करो कि कल नू तुसी मरोगे तो तुहानू

तंदा पिट हो पाई हो तुम कूड़ कमाओ। तंदा कहंदे ने काम ये जड़ा रोना है ना, कई लोगों ने यह भी एक काम बना लिया। उची उची रोंदे ने कि लोकी कहणगे इहदा बड़ा प्यार सी, ये बड़ा रोंदा है। पर साहब जी कहंदे ने भाई जिहड़ा मर गया है ना, किन्ना भी जोर ला ला के रोवो उन्हें तुहाडा रोना नहीं सुनना। ये तुसी रो रो के लोगों

एक गल और कही ऐ इंसान ए ना कहो कि गुरु नानक कहंदा सब कुछ छड़ दियो। हां मैं कहना पर विचार तुसी

चंगे गुणा का व्यापार करो, अवगुण छड़ दियो, गुणा नू संभालो, एहो जे काम करो कि उस दरगाह विच तुहानू इज्जत

कोई काम कर लो। ज्यो लाहा, लाहा कहंदे ने लाभ, तोटा कहंदे ने नुकसान। जे किसे काम विच लाभ है ते नुकसान भी जरूर है, ते पाई जिहड़ा जमया है उन्हें मरना जरूर है। ते परमेश्वर दी रीत है ते हुण

पर फिर ताना मारिया, फिर शुक्र विच आ गए। ऐ करता या काल पुरख, तू सारिया दा है, पर एक गल है, जे सकता सकता कहंदे नी तगड़े आदमी नू। जे तगड़ा आदमी तगड़े नू मारे ता मन विच रोस नहीं हुंदा। पर यह मुकाबला बराबर नहीं सी। बाबर दे कोल बंदूकां सन ते इमनाबाद वालियां कोल सिर्फ तलवारां ते भाले ते तीर कमान सन। एक कोई बराबर

कवि मैं बहुत वड्डा वा, मेरे वर्गा कोई बहादुर नहीं, मेरे वर्गा कोई अमीर नहीं। ते गुरु साहब जी कहंदे ने अकाल पुरख खसमी नदरी कीड़ा आवे, ओ इंसान तेरी निगाह विच एक कीड़ा है के कीड़िया दी तरह ओ दाने पिया चुगदा है। कई जन्म लैके कई वरी मर के इंसान जिहड़ा है फिर भी तेरे अंत नू नहीं पा सकिया। खसमी नदरी कीड़ा आवे जे ते चुगे दाने, मर मर जीवे ता

कृपा करो मेरा राज अटल रवे। गुरु साहब ने कहा बाबर किसी दा राज अटल नहीं रहा, पर हां जे सच ते चलने तुहाडा राज रवेगा। गुरु साहब दे आशीर्वाद दे नाल इन्हां दा राज हिंदुस्तान ते शुरू होया। ज्यों ज्यों बाबर दी वंश ने सच ते न्याय ते प्रजा की देखभाल की, इन्हों का राज चलता रहे। जदों इन्होंने जुल्म शुरू किए तो औरंगजेब के वेले जिन्हें जुल्मों की अत चुकी, इन्हों का राज खत्म हो गया। गुरु नानक साहब तो राज शुरू होया ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह के वेले इन्हों मुगलों का राज जिहड़ा सी ए फिर खत्म होना।

एक बार सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। हजूर पातशाह कैसे मनुख दे मन दी।

कौडी बदले त्यागे रतन छोड जाहे वाहू का जतन सो संचो जो होछी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर ना चेत्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कबे न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय।